0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, अच्छे कर्मों का फल, उस लड़की को आंखें वापस मिल गई और तब उसको इस बात का पता चला कि वो लड़का जो उसको बहुत चाहता था वो भी देख नहीं सकता था, ब्लाइंड था। लड़के ने अब उससे पूछा, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने साफ इनकार कर दिया। अपने टूटे सपने लेकर वो लड़का उस लड़की की जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया, सिर्फ ये कहकर कि मेरी आंखों का ख्याल रखना, देखना कि कभी इनमें आंसू ना आए।
2: जॉनी जॉनी।

0: आ कुड़िया माड़ा जा टाइम तो देखी, मेरा तो कल्चर ऑफ पंजाब सुनना रह गया।
1: कोई गल नहीं, हुण सुनो कल्चर ऑफ पंजाब साडे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
2: कल्चर ऑफ पंजाब हुण यूट्यूब ते।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: पंजाब
2: चुटकले कहानियां चटपटियां
3: गल्लां सुनो साडे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ पंजाब।

हम अक्सर अपनी जिंदगी निकाल देते हैं उस बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ को ढूंढते हुए। मेरी एक कजन है जो 30 साल की होने वाली थी और वो बहुत अजीब फील कर रही थी इस बारे में। उसको लग रहा था कि शायद सबसे खूबसूरत टाइम उसकी जिंदगी का पीछे रह गया। और हुआ यूं कि वो रोज की तरह अपने बर्थडे वाले दिन जिम गई और एक 80 साल की औरत को वहाँ वर्कआउट करते देख हैरान रह गई। कुछ सवाल पूछे उसने उस औरत से, वो क्या थे, बात करेंगे अबाउट इट बट आफ्टर दिस नेक्स्ट नंबर।

मेरी कजन ने उस औरत से पूछा कि उस लेडी के हिसाब से उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम कौन सा था। तो उस 80 साल की औरत ने कहा कि जब वो छोटी थी और उसके माँ बाप उसे खूब प्यार देते थे, वो टाइम उसकी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल टाइम था। फिर जब वो स्कूल जाने लगी, नई चीजें सीखने लगी, तो वो टाइम भी बहुत खूबसूरत लगा। फिर नौकरी मिली, शादी हुई, दैट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। फिर फैमिली शुरू हुई, अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखा, बहुत खूबसूरती से निकला वो वक्त भी। और आज वो 80 साल की है, तंदुरुस्त है, सबको प्यार देती है, सबसे खूब प्यार लेती है, खूब रिस्पेक्ट लेती है। तो अब वो कंफ्यूज है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये टाइम उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम है। तो देखिए, एक सोच ही है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकती है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। खूब प्यार और रिस्पेक्ट दो और वापस पाओ बहुत सी खुशियां और बहुत सा प्यार।

आंखों में बस के दिल में समा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जगा कर चले गए, चेहरे तक आस्तीन वो ला कर चले गए, क्या राज था कि जिसको छिपा कर चले गए, रग रग में इस तरह वो समा कर चले गए, जैसे मुझी को मुझसे चुरा कर चले गए, आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, एक आग सी वो और लगा कर चले गए, लब थर थरा के रह गए, लेकिन वो ए जिगर जाते हुए निगाह मिला कर चले गए। अभी आपने एंजॉय किए जिगर मुरादाबादी की कुछ बेहतरीन नज्मों की कलेक्शन में से एक ब्यूटीफुल सी नज्म आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ।

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: किसी को माफ करना बहुत हिम्मत का बड़े दिल वालों का काम है. आफ्टर ऑल हर फीलिंग की जड़ तो दिमाग ही है ना. इसलिए बस एक सिंपल सा उसूल बना लें, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट. माफ करें और भूल जाएं. इतना हमेशा याद रखें कि दिल में नफरत और बदले की फीलिंग को पाल कर रिश्ते कभी मजबूत नहीं बन सकते. इसलिए अपनी और बाकी सब की खुशी के लिए जस्ट स्टिक टू दोज थॉट्स दैट गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड उन थॉट्स को निकाल कर बाहर फेंक दें जो आपका दिल दुखाती है.

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। सैंडी ग्रीनबर्ग नाम का एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, पर पुअर फैमिली से था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने को गया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई आंख की डिजीज हो गई जो टाइम पर डिटेक्ट ना होने की वजह से सैंडी की आइट साइट चली गई। पर पढ़ाई उसने तब भी जारी रखी। पता कैसे? उसके हॉस्टल का रूममेट रोज रात को उसे टेक्स्ट बुक्स पढ़कर सुनाया करता था। अच्छा, इस सिचुएशन में

दिल और प्यार का रिश्ता तो बहुत पुराना है। जिस इंसान ने आपके दिल में घर बना लिया, फिर उससे खूबसूरत आपको अपने आसपास और कौन नजर आएगा। जहाँ तू है वहाँ मंजर हसीन होता है, बाहर आए तो तू है यकीन होता है। तेरे दामन की हवा लेकर महकता है चमन, तेरी नजर का असर जानशीन होता है।

अपने मनपसंद साथी का साथ हो तो हर मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसानी से कट जाता है। ये उदासियाँ, ये बेबसी जो तुम हो पास कुछ नहीं, दिल में मचल जाएं कहीं वो ख्वाहिशें जगा दो। अनजान राहें, अजनबी सफर, कब तक मैं रहूं तन्हा, कट जाएगा हर रास्ता जो तुम कदम से कदम मिला लो। फिजा महके खुशबू से चांद तारे उतर आए वहीं, मेरे दिल के अंधेरों में कहीं यूं महफिलें सजा दो। मेरी जुस्तजू हो मेरी आरजू, ना जुदा रहा करो मुझसे, मुझे इश्क है हाँ तुमसे, अब जरा सा मुस्कुरा दो।

थी गिरे और गिर गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो जी, यही डिटर्मिनेशन, ये जिद ही है जो आपको जीत की तरफ ले जाती है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो अपनी जिद से, लगन से नया रास्ता बना दे, ही इज द चैंपियन इन द ट्रू सेंस। वेल, हम भी इस सफर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए हैं, बट बिफोर आई से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, लेट्स एंजॉय दिस नेक्स्ट नंबर टुगेदर।